पाणे तरण परत परे पाणे ही जिस भक्ति लाए नानक विरले ही पौड़ी वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उदारी एक खणे जन सरण तेरा नाऊ सदा सद जा पिए तृष्णा भुख बिका बिकरालू नाए तेरा तरा पिए रोग शोक दुख बंज जिस नाऊ मन वसै तिसें प्राप्त लाल जो गोर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया श्लोक महला पंजवां मित्रा मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंग कुसुंबै पुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी हौं तुद बिन अड ना लहंदी महला पंजवां सस विरायण नानक जियो ससुरावादी जेठो पाओ पाओ लू है हब्बे पास पुणे देवतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू बुठा चित तिस दर्द निवारण जिस तू बुठा सचित तिस कदे न हारण जिस मिलया पूरा गुरु सो सर पर तारण जिसनो लाए सच तिस सच संभालण जिस आया हथ निदान सो रहया पालण जिसनो इको रंग भर भगत सो जानण ओह सबना की रेण बिर ही चारणो सब तेरे चोज बढ़ाणो सब तेरा कारणो श्लोक महला पंजवां औसत निंदा नानक जी मैं हब मंजाई छोड़िया हब के जित्यागी हबे साग कुड़ावे डिठे तो पल्ले तैं ढह लागी महला पंजवां फिरदी फिरदी नानक जी ओ हाँ फावी थी बहुत दिशा वरपंदा ता हाँ सुख सुखाली सुती जा गुर मैं लसजन मैं लदा पौड़ी दो सभे दुख संताप न तुदो भुली है जे कीचन लख पाव ता कहीं ना कुली है जिसनों विसरै नाओ सो निरतन कांडी है जिसनों विसरै नाओ सो जो नी हांडी है जिस खसम न आवे चित तिस जम डंड दे जिस खसम न आवी चित तिस रोगी से गणे जिस खसम न आवी चित सो खरो अहंकारिया सोई दोहेला जग जिन नाउ विसारिया श्लोक महला पंजवां टैंडी बंदिश मैं कोई ना डिठा तू नानक मन पाणा कोल कमाई तिस मित्र बचोले जय मिल कंत पछाणा महला पंजवां।

आतो शरणी पौड़ी मिल नारी सतसंग मंगल गाविया करका हुआ बंदा नऊ बौड़ना ताविया बिनठी दुरमत दुरत हुए कुड़ाविया शीलवंत प्रधान हृदय सचाविया अंतर बाहर एक एक रिताविया मन दर्शन की प्यास चरण दास आविया शोभा बनी सिंगारू खसम जा राविया मिलिया आय संजोग जांत सुभाविया श्लोक महला पंजवा हब गुण तंडे नानक जियो मैं कूथिए मैं निर्गुण कहे ते क्या हो गए ताओ जीवड़ दा तार न कोई जाचक सदा जा चोबै महला पंजवा देश जंदड़ी ऊण मझूणा गुर सज्जन जियो तराया हब्बे सुख सुहेलड़ा जिता सुता जिता जग सबाया पौड़ी वड्डा तेरा दरबार सचा तुद ताकत सरसाह पातशाह निचल चौर छत जो भावै पार ब्रह्म सोई सच न्याओ जे पावै पार ब्रह्म मनसावे मिले थाऊ जो किन्नी करतार साई भली गल जिन्नी पछाता खासम से दरगाह मल सही तेरा फुरमान किने ना फेरी है कारण करण करीम कुदरत तेरी है श्लोक महला पंजवा सोए सुनंदड़ी मेरा मन तन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंध जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हठ मजाहू मैं कू माणक लद्दा मुल ना किदा मैं कू सतगुर दिता टूड मंजाई तिथि आ थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिस कै मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल प्रगासया सो अणदिन जागा लगा रंग चरण अरबिंद सब परम पौ पागा आत्म जिता गुरमति अगजत पागा जिस ते आया पार ब्रह्म सो कल महतागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मजनागा जिस प्रभ मिलया अपना सो पुरख सुपागा नानक तिस बलहारण जिस एवड़ भागा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सोदारू राग आस्था महला पहला एक ओंकारू सतगुर प्रसाद सोदारू तेरा केहा सो कर केहा जितब सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा उकेते तेरे भावनहारे

चौथा फर के जान सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोह कौ राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई हर कीरत हमरी रह रास राओ हर जन केवड़ पाग बडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृपदास है मिल संगत गुण प्रगास मिल

सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपार सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जी का दातार हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत बिचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे जोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाओ तुद बैन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है जो सेव तुद जी जन नानक तिन कुर्बाणा।

सब सह का जान होई आस्था महला चौथा। तू करता सच यार मैडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हम पाई राव सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझी माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जाना ही सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया।

मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया। अवर काज तेरे कित न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजा मिलाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहो। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो ब्रत पारा, हमरे दोष्ट सब तुम कावहो। आप हाथ दै मोहि बचावो, सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सब करतारा, मोर रक्षा निज कर दै करें। सब बैर न को आज संगए, पूर्ण होए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं। जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है। चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दै मुझे भरे आए। मरण काल का त्रास निभरे आए, पूजो सदा हमारे पछा। सरिया सुरजु करे हो रक्षा, राख ले हो मोहि रखनहारी। साहिब संत सहाय प्यारी, दीन बंद दुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाई ब्रह्मा बपतरा। काल पाई शिव जू अवतरा, काल पाई कर विष्णु प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो। वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताही हमारा, जवन काल सब जगत बनायो। देव दैंत जश्न उपजायो, आदि अंत कै अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार दसी को हमारी। सकल प्रजा जन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो। सतरन को पलम बद कियो, कट कट के अंतर की जानत। पले बुरे की पीर पछानत, चिट्ठी ते कुंचर असथूला। सब पर कृपा दृढ़ कर फूला, संतन दुख पाई ते दुखी। सुख पाई साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने। खट खट के पट पट की जाने, जब उद करख करा कर तारा। प्रजा धरत तब देही अपारा, जब आ करख कर तो कब हूँ। तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब थारे। आप अपनी बूझो चारे, तुम सब ही तेरे तंद्रालम। जानत भेद भेद अरियालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब। आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ो चारत बेदा। जा को पेव ना पावत बेदा,

आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन दोहे तेती, तुमरा लखाना जाई पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कहीं भूपा, अंडज जेरज सिद्ध जकीनी, उतपुज खान बहोर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवा बैठा, कहूं समट पयो शंकर कैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव, अब रक्षा।

प्रणकाता जे अस्तुज तब सरणी परे तिनके दोष्ट दुगत वै मरे पुरख जवन पग परे तिहारी तिनके तुम संकट सब टारी जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट न आए हैं रक्षा हुई ताई सब काला दुष्ट रेष्ट डर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे न हरे हो ताके ताप तन कमो हरे हो रिद सिद कर्मो सब होई दुष्ट छा स्व सक न कोई एक बार जिन तुम संभारा काल वास्ते ताही उबारा जिन नर नाम तिहारु कहा दारिद दोष्ट दुख दे रहा खड़ग के तमें शरण तिहारी आप हाथ दैले उबारी सर्व ठाउर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लिह बचाई सवैया।

मत एक न मान्यों। सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यों। सरी असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहूं सब तो हे बखान्यों। दोहरा

सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज से ती मन बजियां बधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गा बणाइया शब्द तां गावो हरि केरा मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला।

क्या नहीं कर तेरा है, करता तेरा सब किश है, जिस दे सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सचे साहिब क्या नहीं कर तेरा है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किया गुरु बिट हो, जिस दिया है वड्याइया, कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द कर सभा गए, कर सभा गए शब्द वाजे, कलाजित कर धारिया, पंच दूत तुद वस किते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जन कौ, से नाम हर कह लागे, कह नानक तैं सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे, अनद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे,

बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होय उधारो। एह वास्त जी न जाई नित नित रखो उतारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कीतोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस प

तेन सद बलहारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। ओ सोहिला राघव गीत की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ता की है। करते का होई विचार चित कर गावो सुहिला सिवरियो सरिण हार। तुम गावो मेरे निर भो का सुहिला हूँ। और युक्त सदा सुख राव नित नित जीअड़े समालियन देखा गा देवन हार। तेरे दाने कीमत न पवे तिस दाते पवन समार। समत सा लिथया मिल कर पावो तेल। देव सजन असी सड़िया जो हुए सह सुमेल। कर कर एहु पहुंचा सदवे मत पवन। सदन हारा सिमरी है नानक सीधि अवन। राग आसा महला पहला। छे कारो छे गुर छे उपदेश। गुर गुरे कोवे सनेक बाबा। जय कर करते पीर करो ए सो कार राख वढ़ाई तो राव। विश्व जसिया कड़िया पैरा थिति वारी माह। वाह सूरज को रुत अनेक नानक करते के ते वेश। राग तनासरी महला पहला। गगन मै थाल राव चंद दीपक बनी। तारिका मंडल जनक मोती। धूप मालयान लो पवन चबरू करे। सगल बनराई फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वा जंत पेरी राव। सहस तब नैन नन नैन है तोहे कहो। सहस मूर्त नन एक तोही। सहस पद बिमल नान एक पद गंध देनो। सहस तब गांधेव चलत मोही। सब मैं जो जो तैसो ए तिसद चानण। सब मैं चानण होए गुरसाखी जोत प्रगट होए। जो तिस पावै सो आरती होए। हर चरण कबल मकरंद लोभित मनो। आन जन मोहया ही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिंग का होए। जाते तेरे नाई वासा। रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर व परया मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिख लिखे गुर पाया मन हर ले मंडल मंडाही। कर साधु अंजलि पुन वड्डाही। कर डंडा उत पुन वड्डाही राव। साकत हर साधन जानिया तिन अंतर हो मैं कंडाही। ज्यों ज्यों चले जुगै दुख पावहि। जमकाल सह सिर डंडाही। हर जान हर हर नाम समाणे। दुख जन्म मरण पव खंडाही। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर। बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे। हर राख राख बड़ वड्डा हे। जन नानक नाम उधार टेक है। हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंज।

तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे। हाजरा हजूर जाहरा जहूर चावर छत्र तख्त दे मालक दसा पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर, संध्या वक्त दे सजे हुए दीवाना अंदर आप सरबत माई पाई सिख संगत बड़े अदब प्यार ते सत्कार साहिब चौंकड़े लाके देवत्यां समान जुड़ बैठे हो। इलाही बाणी दे कीर्तन सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी सोधर जी दे जाप चल रही लड़ीवार कथा मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दीआं बख्शिशां आप सरबत संगत बड़े अदब प्यार ते सत्कार साहिब सरवण कर रहे सी। कुछ समा गुरु चरणा विच दासरियां दे ढाडी जत्थे नूं आप सिख संगतां दे रूबरू होण दा समा प्राप्त होया है। कुछ कहण दी आसीस बख्शदे होए सब तों पहलां सतगुरां दी बख्शी होई गुरु फतेह दे सिमरन दे नाल हाजरी लवाओ। सारी संगत बुलंद आवाज विच गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। लगातार ढाडी जत्थे वालों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दे जीवन संबंधी आनंदपुर साहिब जी की पावन पवित्र धरती से जो मेरे सतगुरां दे चोध ने वो आप संगत की सेवा दे अंदर बयान किए जा रहे सन। जिथे कल दे दीवान अंदर खालसे की साजना का इतिहास आप संगत की सेवा दे अंदर बिना कर सके हाँ, विचार अनुसार अज आनंदपुर साहिब जी की पावन पवित्र धरती तो अगेरे को चलण का यत्न करिए। अगेरे जो कुछ वापरिया है मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी इन्हां मुगलिया हकूमत दे हुक्मरान जेड़े जालम सुभा दे ने गुरु घर दे नाल विरोधता ते ईरखा रखण वाले ने उन्हां दा टाकरा मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने जिस हौसले दे नाल कीता है और सतगुरां दे संग गुरु दी चरण शरण विच रहण वाले गुरसिख जिस हौसले दे नाल दुश्मन दलां दे दंद खट्टे करदे रहे ने वो इतिहास आप संगत दी सेवा दे अंदर कहण दा यतन कर रहे हैं। आनंदपुर साहिब जी का आखिरी युद्ध 1704 ईस्वी के अंदर इतिहास विचारवाना की राय अनुसार मई के महीने के अंदर आनंदपुर साहिब नू आण के फौजा ने घेरा पा लिया। दरअसल औरंगजेब बादशाह दक्षण इलाके दे विचों होई बगावत नू दबाउंदा दबाउंदा अक गया। हर साल लखां की गिणती के अंदर फौजा मारिया जांदियां खत्म हो जांदियां बेहद नुकसान हुंदा रहा। अज जे दिल्ली पहुंचा इस नूं इह रिपोर्टां मिलियां ने इह खबरां मिलियां ने कि पंजाब दी धरती अंदर दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर साहिब दी धरती ते अपनियां फौजां तैयार पर तैयार चढ़दी कला विच विचर रहे ने। इस गल दीआं खबरां गुरु घर दे दोखियां ने वधा चढ़ा के दित्तियां। बादशाह जिवें दक्षण दे इलाके दे अंदर बगावत होई है आउण वाला समां ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ

प्रथ में गर्भ माता के वासा उहां छोड़ चरण में आया। चित्रसाल सुंदर बाग मंदर संग न कछु जाया। अवर सब मिथिया लोभ लभी गुरपुरे दियो हर नामा। जी को एहा वस्त सभी रहाओ इष्ट मीत बंधक सुत पाई संग बनता रथ हसया। जब अंति अवसर आए बनियो है उनके कत ही काल ग्रसया। कर कर अनर्थ बिहा जी संते सोना रूपा दामा। ताड़ी को ओ पाड़ा मिलिया होर सगल पयो बिराना। हैवर गैवर रथ संभाहे गौ कर कीने मेरे। जब ते होई लामी काई चले नाही इक पैरे। नाम तन नाम सुख राजा नाम कुटम सहाई। नाम संपत गुरु नानक को दी ओ मरे न आवे जाए। गुजरी मैला पंजवा तिप दे कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। दुख बिन से सुख किया निवासा कृष्णा जलन बुझाई। नाम निधान सतगुरु दृढ़ाया बिन सुना आवे जाई। हर जप माया बंधन टूटे भय कृपाल दयाल प्रभ मेरे। साध संगत मिल छूटे रहाओ। आठ पैर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता। हर शोक दोहो माहे निराला करने हार पछाता। जिसका साथ नहीं रख लिया सगल जुगत बने आई। कहो नानक प्रभ।

पत्र लिए कर अपने सगल करत नमस्कार। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल सृष्ट को तनी कही जय। जन को अंग निरारो रहाओ साध संग नानक बुद्ध पाई। हर कीर्तन आधारो नाम देव त्रिलोचन कबीर दासरो। मुक्त पयो छम्यारो गुजरी महला पंजवा। है नाही को बूजन हारो जाने कौन पता। शिव ब्रंच अर सगल मोन जन गह न सकाए गता। प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर विद बुझिए। बकन कथ रहता रहाओ आपसे पगता आप स्वामी आपन संग रता। नानक को प्रभ पूर रहो है देखो जत्र कथा। गुजरी महला पंजवा। मता मसूरत अवर स्यानप जन को कछु ना आयो। जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर त्यायो। प्रभ को भगत वचन बिरदायो करे प्रताल बारक की न्याई। जन को लाड लड़ायो रहाओ जब तप संयम करम तरम। हर कीर्तन जन गायो शरण पड़ो नानक ठाकुर की अभय दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा। दिन राती आराधे प्यारो निमख ना की जय टीला। संत सेवा कर पावनी लाये त्याग मान हथीला। मोहन प्राण मान रंगीला बास रहो हीरे के संगे। पेख मोयो मन लीला रहाओ जिस सिमरत मन होत आनंदा। उतरे मनो जंगीला मिलबे की महिमा बरना साको। नानक परे परीला गुजरी महला पंजवा। मुन जोगी शास्त्र गे कहावत सब कीने बस अपने ही। तीन देव अर कोर तेतीसा इनकी हैरत कछ न रही। बलवंत व्याप रही सब मही।

अपना ध्याया, हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया। ठाकुर होए आप दयाल, पई कल्याण आनंद रूप हुई है, उबरे बाल गोपाल रहाओ। मिल वर नारी मंगल गाया, ठाकुर का जयकार कहूं नानक तिस गुर बलिहारी, जिन सबका किया उधार। गुजरी महला पंजवा, मात पिता पाई सुख बंदक, तिनका बल है थोड़ा, अनेक रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा। ठाकुर तुझ बिन आहे न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श पायो, बिनचो सगल निहोरा। गुजरी मैला पन्नवा, आल जाल प्रम मोहत जावे, प्रभ चेती रंग लाए, मन को ए उपदेश दृढ़ावे, सहज सहज गुण गाए। साजन ऐसो संत सहाय, जिस पेटे टूटे माया बंद, बिसरना कभू जाए रहाओ। कर्त कर्त अनेक बहुपाती, नीकी ए ठहराई, मिल साधु हर जस गावे, नानक पवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवा, किन मैं खाप उठा पनहारा, कीमत जाए ना करी, राजा रंक करे खिन पीतर, नीचे जोत तरी।

पूरे मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जी आ सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाए तह परम अंधेरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहा। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभु आही नानक टेक पई करते की और आस बिदानी लाहे। गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दी जय जस गावो निस्पर के संग दास सब चारो यह मनोरथ मोर ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर चित चित वो हर रसन अरादो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करो कर जोर नाम जपे नानक दास तुमरो उदरस आखी फोर। गुजी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते ताए साध संगत को जो न साके मल मल तो वह पाए अब मोह आए पर शरण आए गोज पाए।

जन नानक अंग किया प्रभ करता है, जाके कोट ऐसी दासाए गुजरी मैला पंजवा। अब जस मिटे होवे जग कीरत दरगे बैसन पाई है, जम की त्रास नाश होए खिन में सुख अनंत सेती कर जाई है। जाके काल न देखी जाई है, आठ पहर सिमरो प्रभ अपना मन तन सदा त्याय रहाओ। मोह शरण दीन दुख पंजन तू देहे सोई प्रभ पाई है, चरण कमल नानक रंग राते हर दासे पैज रखाई है। गुजरी मैला पंजवा विश्वंबर जी उनको दाता भगत परे पंडार, जाकी सेवा निफल न होवत किन में करे उदार। मन मेरे चरण कमल संग राच सगल जी जाको आराधे ताहू को तू चाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार होए सहाय।

हर हर नाम दियो गुर अवख दे उतर गयो सब ताप राव हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा सार मिटी ब्याज सर्व सुख होए हर गुण सदा विचार अंगीकार कियो मेरे करते गुरु पूरे की वडियाई अब चलनी उतरी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाई गुजरी मेला पंजवा कबहु हर सो चीत न लायो तंदा करत बिहानी औदे गुण निज नाम न गायो रहाओ कौडी कौडी जोरत कपटे अनक जुगत कर कायो विसरत प्रभ केते दुख गनिये महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरण आयो गुजरी मैला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथिया तज सदा भगवंत रहाओ नाम एक आधार भगता ईत आगे तेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समरथ श्री तारे शरण ताकी गही मुक्त जुगत रवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी मैला पंजवा कर चौथा चौपदे इको अंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाण

मिटे सगल उपाग रहाओ। मात पिता खुद मीत पाई किस बिना नहीं कोए। ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रविया सोए। कोट जतन उपाव मिथिया कछ न आवे काम। शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ के नाम। अगम दयाल प्रभ ऊंच

अपना गुरसेव सद ही रमो गुण गोविंद सास सास आराध हर हरे लह जाए मन की चिंग मेरे मन जाप तब का नाम सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ रहाओ साध संग उधार एहु मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिन सह मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी शरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक क्यों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बख्श ली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी मैला पंजवा गुरु प्रसादी प्रभ ते आया गई शंका टूट दुख अनेरा पै बिना से पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साद बचन गोविंद त्याए महा निर्मल रीत राव जाप ताप अनेक करनी सकल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे तय पूर्ण काम सास सास ना बिसर कबहु ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगनते सदा कथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरन दृढ़ नानक हर हर शरण गुजरी मैला पंजवा अहं बुद्ध बहु सगन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण जोग मन तन बांच किया जन तूर कोट जन्म के लह पातिक गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते मद आशा कुकरी विकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटी है जमजाल काम क्रोध लोभ मोह मूठे सदा आवागमन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत सर्व विद प्रमते पुकारे कतह नाई छोट हर चरण शरण अपार प्रभ के।

आराध श्री तारे सफल मुहूर्त करण कारण जोग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत वियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मितंत सिमरण काट जमदूत फांस रहाओ सत्र दैन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ गुजरी महला पंजवा तू सम्राट शरण को दाता दुख पंजन सुख राय जाय कलेश मिटे तय परमा निर्मल गुण प्रभु गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाम रहाओ सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लिव लागी कवल प्रगास पै साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप करे संगत सब उदरे बिन से सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभु स्वामी ओत पोत प्रभु साथ शरण परयो नानक प्रभु तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां में।

ताव है, त्रेदस माल रखे जो नानक मोख मुकत सो पावे, जे तो बास दियो मनवाली राम हृदय जप माली राव, उर्द मूल जिस साख तलाहा चार वेद जित लागे, सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे, पार जाते कर आंगन मेरे ओप पत्र तक डाला, सर्व ज्योत निरंजन शंभु छोड़ो बहुत जंजाला, सुन सिखवंते नानक दिन में छोड़ो माया जाला, मन विचार एक लिव लागी पुनरप जन्म न काला, सो गुरु सो सिख कतियले सो वैद जे जाने रोगी, इस कारण कम न कंदा नाही तंदे गृही जोगी, काम क्रोध अहंकार तजियले लोग मोह तिस माया, मन तत अविगत त्याया गुर प्रसादी पाया, ज्ञान ज्ञान सब दास सखियले सेत बरन सब दूता, ब्रह्म कमल मद तास्र साधन जागत नाही सूता, महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया, उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बिकताज अमृत पी आया, गुजरी मैला पहला कवन कवन जाते प्रभु दाते ताके अंत न परे कुमार, जैसी पूख होए अब अंतर तू समरथ सच देवनहार, ऐ जी जब तप संयम सच आधार, हर हर नाम दिन सुख पाई है तेरी भगत परे पंडार रहाओ, सुन समाज रहे लिव लागे एका एकी शब्द विचार, जल थल तरण गगन तह नाही आपे आप किया करतार, ना तद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना ज्योत अपार, सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार, पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्ण महेश आकार, सर्वे जाचक तू प्रभु दाता दास करे अपने विचार, कोट के तिस जाचे प्रभु नायक दें दे तोट नाही पंडार, कुंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार, सिद्ध समाधि

जन्म मरण पज शरण सतगुर उबरे हर नाम रिद रमण गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंत।

नृत्य करी इहो मन चाही, गुर प्रसादी आप गवाई। चित थिर राखे तो मुक्त होवे, जो इच्छी सोई फल पाई। नाच रे मन गुर के आगे, गुर के पाने नाचे ता सुख पावे। अंते जम को पागे रहाओ, आप न चाहे सो भगत कही है। अपना प्यार आप लाए, आप गावे आप सुनावे। इस मन अंधे को मार्ग पाए, अनगिन नाचे सख्त निवारे। सुर कर नींद न हुई, शक्ति कर जगत सूता। नाचे तापे अवरो गावे, मनमुख भगत न होई। सुर नर विरत पक कर्मी नाचे, मुन जन ज्ञान विचारी। सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी। खंड ब्रह्मंड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर

सेवा भगत न होई, जीवत मरे ता शब्द विचार है ता सच पावे कोई। माया के अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तक बिचारी, गुर प्रसाद जी सोई जन पाए, जिनको कृपा तुम्हारी। एकदम साचा विसरे सा वेला बिरथा जाए, साए साए सदा संभालिए आपे बख्शे करे रजाए। तेई नाचे जो तुझ पावे, जे गुरमुख शब्द विचारी, कहो नानक से सहज सुख पावे।

मत रमेशी मुंडी सदगुरु सबको देखना जेता जगत संसार दीदन करते रहे मत केवल देखने वाले ने गुरु ने एक थामे नहीं अनेक थामा से एक रमज न स्पष्ट की गुरु कहते सतगुरु का देखना की है जो देख के चला जाए तो कुछ भी ना होया कहने लगे देखने का मकसद समझ सतगुरु देखिया दिखिया लीनी देखिया तो दिखिया का लफ बड़ा मेरे है देखने तो भाव है अखा न दिखिया तो भाव है उनका उपदेश उनका मंत्र जो गुरु दृढ़ाए उन्हू लै गया बचन गुरु जो पूरे कहे हो मैं छीक गा सी बढ़ा कहते कि गुरु का देखना की है उन्हें दीक्षा ले लेगी जो दीक्षा ना ली वेख के रोज ही चला गया अकल मैं रोज कर ली पर दीक्षा ना ले सतगुरु देखिया दीक्षा ली तो इतने भी गुरु ने आख्या कह लगे एक वेख परसन है क्योंकि जी चेंज आती है ना वो परसन है वो परसन सवैया अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बंसावरी वजों अगली कुल का जिक्र करते हैं अगली गद्दी का अगले सिंघासन का अगली काया का जिक्र करते हैं गुरु ने अपनी रसना तो आख दिता पट्टा के रूप में कहने लगे जो तुरूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत् सो तत् मिलायो शब्द है जिन्हें चाहते हैं पारस परस लफज परस पारस परस परस परस गुरु गुरु कहायो हूँ पारस जनू तो परसन की लड़ नहीं उनका जन्म ही पारस के रूप में होया पारस परस के पारस नहीं बने ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहा अगे लफज तांते उस तो इसलिए लफज वर्त तो ने पारस परस गुरु नानक पारस ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहा अगे गुरु अंगद परस के बने अंग लग के छो पारस परस के ते तीन वार परस लफज वर्त्या गुरु नानक पारस गुरु अंगद पहले परस गुरु अमरदास दूजे परस गुरु रामदास तीजे परस इं गुरु कहां दे गए तो गुरु अर्जन साहब का नाम स्पष्ट लग तो कहने लगे पारस परस परस परस गुरु गुरु कहायो पन मथरा मूर्त सदा थिर लाए चित सनमुख रहो कल युग जहाज अर्जुन गुरु अर्जन साहब का नाम से पहलियां चार पातशाहियों के संबंध में पारस तीन पातशाहियों के संबंध में परस जो परस दाए उदो चेंज आऊंगी उदो लेना परस के अंग लग के अंगद बनता है परसन से देखने इन्ना अंतर तो इतने गुरु अमरदास साहब जी ने लफ्ज़ वरते है कह लगे हे मेरे मालिक तेरे पैदा किए हुए सारे संसार के जीव ने पर गुरु को अमृत की दात झोली पवाने वाला हिरदे वसाने वाला कौन है जेड़ा तेरे सारे पैदा किए हुए जीव जनता गुरु नेख के परसन आया हो कह लगी

ठाकुर पलाभा इनका मतलब जिनका लाभ लोभ ते अहंकार नहीं चुकया अजय उपर गुरु नु प्रश्न नहीं आया वो वेखण वाला ही जीजन संतुल उपाय एक वेख प्रश्न आया तो जरा प्रश्न आया उनके विच आके ही जाई कि लाभ लोभ ते अहंकार ये दो ही चीजा रुकावट ने मैं उसकी चीज लाभ लोभ विचों मेरी निकल गई सब कुछ मेरा ते अहंकार विचों मैं निकल गया सब कुछ मैं ही हूं हंकारी पुरुषे के अंदर सब कुछ मैं ही दोनों मेल देंगे तो लफत बनता है मैं मेरी ये दरम्यान दीवार है अमृत रब सच अमृत है ते अमृत रूपी सच न हिरदे बसाने लिए दरम्यान विचों हो मैं विचों खो गए इसलिए गुरु को जदों परखन आ सिख जदों भाव गुरु की दीक्षा लैन आरा देख नहीं गरीबा चक मार अंदर एक कौड़ी सच्चाई सानू मननी पेगी साडे विचों समेत मेरे बहुतात लोग ऐसे ने जेडे केवल देखने आउंदे गुरु तो दीक्षा रोज दे जांदा है गुरु रोज समझाई जांदा है असीं दीक्षा लैके किन्नी क जाने किन्ने क लोग जेड़ा गुरु दीक्षा देवे ते असीं रोज पल्ले बन लै जाइए मैं क्वेश्चन कीती सी आखिर जिंदगी दे 20-30 साल ते सानू गुरुद्वारे आउंदियां गुजरी जाने ना कुछ जीवन ऐसे उम्र के मुताबिक गुरु ने रोज दीख्या दी हुक्मनामा की रोज दीख्या कोई ना कोई दीख्या तो है ना गुण की जे भला रोज के हुक्मनामे एक गुण ही साडे अंदर दीख्या रूप होकर चला जाता एक वरे के 365 दिन ने जिन्ने वरे सानू आउंदियां बीतदियां ने भला किन्ने क गुण साडे अंदर आ जाते किन्ने क औगुण नस जाते हर गुण न समाने लई कोई औगुण कढ़ना पैंदा क्योंकि गुण के अपोजिट कोई अवगुण है वह गुण ता ही समाउंदा उनके अपोजिट जिहड़ा अवगुण है वह निकलता कुछ निकलेगा ता ही सच आएगा बदी निकलेगी ता ही नकी आएगी जी जुलम निकलेगा ता ही दया आएगी कोई एक चीज जाएगी ये सारी चेंज जड़ी है क्यों नहीं हो रही जे असी अपने आप में खुद प्रचोलिए कोई क्यों प्रचोले अपने आप में खुद प्रचोलिए तो सानू पता लग रहा असी देखिया शामिल हाँ दीख्या बिल्कुल सतगुरु देखिया दीख्या नहीं असी देखिया जरूर दीख्या बिल्कुल नहीं मिली ना लै तो मैं उस कर रहा था गुरु अपनी रस्ता तो आ कह जी गंत सब तू दू पाए पर उन्होंने सारे विचों एक वेख परसन आया एक वो लोग ने कुछ हिस्सा वो है जेडे वेखते ने परसते ने तो जेड़े वेख के परसते ने उन्होंने चेंज उन्होंने तब्दीली जी होंगी है जीवन की उनकी निशानी यह है कि लब लोभ अहंकार तूका जदों लब लोभ अहंकार चुक जाता है ना अंदरों उदों सतगुरु को बड़ा चंगा लगता है सतगुरु भला पाया दा अर्थ की बहुत चंगा लगता गुरु नूं सिख बड़ा चंगा लगता जिहड़ा वेख के परसन आया तो परसिया उसने ऐसा कि लब लोभ अहंकार अंदरों चुक गया जदों गुरु ने यह देखा बनया हो तब्दील होया सिख गुरु नूं बड़ा चंगा लगता लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कहन लगे फिर हुण गुरु टुट पिया पात्र बन गए हुण उसने हरी रूपी सच रूप अमृत अंदर टिकाया कहन लगे

0: इस फैसले विच कोई शंका नहीं के जितना चर ए जीव सतगुरु जी दी सिक्ष्या सुन के अपने मन नू अकाल पुरख दे पाणी अते सिदक विच नहीं लियोंदा उतनी देर आपा समर्पण दी बिरथा पैदा नहीं हुंदी। धन हन ओ गुरु के लाडले सिख जिन्हां गुरु के बाग शहीदियां दे जाम पीते।
1: श्रोतो इस सब पिछोकड़ विचारन समय सुते सुत साडा ध्यान गुरु रामदास पातशाह दी बसाई नगरी अमृतसर वल चलिया जांदा है। इस गुरु की नगरी तो तकरीबन 21 किलोमीटर दूर तहसील अजनाले विच शहीदां दे सरताज ते बाणी दे बोहते श्री गुरु अर्जन साहिब जी अते धर्म दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी याद विच एक इतिहासिक गुरुद्वारा है जो गुरु का बाग नाम दे नाल पुकारिया जांदा है।

8 फरवरी 1921 नूं महंत सुंदर दास ने श्री अकाल तख्त साहिब हाजिर होके अमृत पान कीता अते तीसरी नामी इस्त्री नाल आनंद कार्ज करा लिया। हुक्मनामिया अनुसार महंत दा नाम जोगिंदर सिंह अते उस दी पत्नी दा नाम ज्ञान कौर रखा गया। इस दे नाल ही महंत गुरुद्वारा कमेटी अधीन होके सेवा करन लगा।

पादरी सीएस एंड्रयूज की अक्खी वेखी रिपोर्ट जो 19 अते 20 सितंबर 1922 नूं लाहौर दे अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून विच प्रकाशित हुई जो कि गुरु के बाग दे साथी दी घटनावां दी इन विनवीन वांगर है जिस नूं पढ़ के रोंगटे खड़े हो जांदे हन। गुरु के बाग दे मोर्चे ने सिंघां दी लाज व बहादरी दा चर्चा संसार भर विच छेड़ दिता। पंडित मेला राम बफा ने भी गुरु के बाग दे शहीदां नूं श्रद्धांजलि अर्पण कीती। प्रोफेसर रुचि राम सहनी अपनी अंग्रेजी पुस्तक स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन सिख श्राइन सिख गुरुद्वारे की आजादी लिए संग्राम लिखते हैं। पुराने सिख शहीदां उपर ढाए गए अकै जुल्मां दी हिरदे वेदक वार्तावां अते जिस तरह उन्होंने इन्हां सख्तियां नूं खिड़े मत्थे सहारिया दीआं गल्लां इन्नियां भयानक सन कि मेरा दिल इन्हां नूं इन विन मन्नण तों संकोच करदा सी अते मैं कहिंदा हुंदा सां कि अजिहीआं गल्लां नहीं हो सकदीआं। इह केवल इतिहासकारां दीआं मजबी जोश विच कीतीआं अतकथनीआं ही हो सकदीआं हन। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ

एक मुकम्मल करामात हुई है कि सिरजनहार ने खुद अपने आप नू उस विच टिकाया है। सब सिखा ने ते संगता ने उस नू अकाल पुरख दा रूप जान के बंदना कीती है। गुरु रामदास जी, तुसी सदा कायम रहन वाले हो, थानू तोलिया नहीं जा सकता, भाव तेरे गुण गिने नहीं जा सकते। तू एक ऐसा समुंदर है जिसकी हाथ नहीं पै सकती, पारले ते ओरले बन्ने दा अंत नहीं पै सकता।

आप निर्णय करते हैं कि जिस किसी ने गुरु रामदास जी का दीदार किया है उसका मन तदों टिकाने आ गया है, पाप अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़ गया है। श्रोतागण जोड़ो अपनियां बिरतियां नूं गुरु रामदास साहिब जी दे चरणां नाल तां जो उन्हां दा दीदार हो सके अते साडे सारयां दे मन टिकाणे आ सकन। मन दियां दुविधावां नूं दूर कर असीं गुरु दे चरण परसन दे काबल बन सकीए।

आप जी दा दुनियावी आगमन माता दया कौर जी दी कुखों पिता बाबा हरदास जी दे ग्रह विखे 24 सितंबर 1534 ईस्वी नूं चूना मंडी लाहौर विच होया। अपने मापियां दे पहले पुत्तर होण करके आप जी दा नां जेठा रखिया। सिक्खी परंपरा नाल जुड़े स्रोतियो ए जेठा नाम रखण दी प्रथा बहुत सदियां चलदी रही है।

आप जी की परवरिश लई आप जी की नानी आप जी नू नानके पिंड बसर के जिला अमृतसर ले आई। इस छोटे जहे पिंड विच ही आपने घुंगणिया बेचण की किरत करके गुजरान करना आरंभिया। इथों ए भी समझ आउंदी है कि आप जी दे नानके परिवार की माली हालत भी बहुत ही चंगी नहीं सी।

हे मेरे प्रीतम प्रभु, मैं तेरे दर्शन करन तो बिना रह नहीं सकता। तेरे बिछोड़े विच मेरियां अखां विचों बिरहों दा पानी एक सार चल पैंदा है।

इक्की में गंगा इस्नान वेले जदो करते दी बख्शिश होई ता तीजे पातशाह दी सांझ गुरवाणी नाल बन आई। बीबी अमरो जी राही एक गुरु दत्त ते पुज्जे अते सिख धर्म विच प्रवेश कीता। उपरंत आप जी ने बासुके नु त्याग अपने साथ संबंधिया समेत खडूर साहिब गुरु अंगद पातशाह दे चरणा विच जाके ही रहना शुरू कर दिता।

0: माता जी दे सवाल दे उत्तर दी। गुरु अमरदास जी ने एक कह के कि इस वर्गा ता यही है अते जेठा जी नाल आनंद कार्ज कर दिता, या फिर कई बार ता इंज आख छड्डे हन कि जिस वल इशारा कर दिता गया है हुण दूजा नहीं हो सकता।
1: गुरु इतिहास खोजियो, सिख इतिहास इस साखी दी हामी नहीं भरदा। जिस तरह आप जी नूं पहला दर्शाया है, गुरु अमरदास पातशाह जी गुरु रामदास जी नूं पिछले 12-13 सालां तों पूरी तरह जानदे सन अते उनां दे संपर्क विच सन। इत्थों तक कि जद गुरु अमरदास साहिब जी ने सिख धर्म विच प्रवेश कीता अते बासरके तों खडूर साहिब गए तां भाई जेठा जी अपनी नानी समेत उनां दे नाल ही सन।

श्रोता चन गुरु रामदास साहिब जी दी बड़ियाई दा भेद भी उनां दी निमरता गरीबी ते सादगी विच समोया होया है। महाकवि टैगोर ने लिखा है, तुसी उतना चिर बड़े नहीं हो सकते जितना चिर निमरता विच बड़े ना होवो।

तीजे पातशाह ने रामदास जी भाई जेठा जी अगे मत्था टेक के उन्हां नूं गुरगद्दी दी सौंपना भी कर दित्ती। गुरगद्दी सौंपना समय बाणी दा सारा खजाना आप जी दे सपुरद कीता। इस खजाने विच भगत बाणी समेत पहले दूजे पातशाह दीआं रचनावां अते आप जी दी अपनी वाणी भी सी।

उपरांत अपने पुत्र बाबा मोरी जी तो आरंभ करके सारियां संगतां पासों आप जी नूं मत्था टिकवाया। उस समय गुरु रामदास जी की उम्र केवल 40 बरे दी सी। गुरु रामदास साहिब जी ने 7 सालां दे सीमित समय विच जो सिक्खी विरसे नूं देण दित्ती।

0: श्रोता जन आप जानते हो कि सिख धर्म दे प्रचार नूं मुख रख के तीसरे नानक गुरु अमरदास साहिब जी ने 22 मंजियां अते 52 पीड़े स्थापित कीते सन। चौथे पातशाह ने इस प्रचार प्रबंध विच एक होर वादा कीता, आप जी ने उन्हां मंजियां तो इलावा मसंद भी कायम कीते।
1: इस सिस्टम नूं बाद विच पंजवें पातशाह ने बकायदा संस्था दा रूप बख्शिया अते देश दे हर भाग वास्ते मसंद थापे गए। अपने समय ए प्रचारक संस्था सिक्खी प्रचार दा बड़ा वधिया साधन बनी। बाद विच इस प्रथा विच नुक्स आ जाण कारण दशमेश जी ने इस प्रथा नूं पक्के तौर ते खत्म कर दिता सी।
0: प्यारे श्रोतियो, इत्थे एक गल बड़ा ध्यान मंगती है कि सिक्खी प्रचार अज दी तरह कदे भी कूड़ा ऐड़ा ईड़ी दा लोटा नहीं सी। प्रचारक योग्यता दे आधार ते नियत कीते जांदे सन, जिवें पहले जामे समय भाई मनसुख आदि, फिर 22 मंजियां, 52 पीड़े अते हुण मसंद प्रथा।
1: इत्थे ही बस नहीं, जेकर मसंद प्रथा विच नुक्स आया ता इस प्रथा दा ही अंत कर दिता गया। सिख धर्म दे प्रचारक हमेशा पढ़े लिखे उच्च कोटी दे विद्वान गुरबाणी भरपूर जीवन वाले हुंदे सन। सिख प्रचारक वास्ते अज भी ए गल उतनी ही जरूरी है जितनी के उदों सी।
0: गुरु रामदास साहिब जी उच्च कोटी दे संगीतकार सन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर आप जी दे 679 दरगाही वचन 30 रागां विच विराजमान हन। गुरु रामदास साहिब जी दे समय तीक दी बाणी रचना कुल 25 रागां विच मौजूद सी। इस विच्चों 19 रागां विच पहले पातशाह दी वाणी सी। इन्हां 19 रागां विच्चों गुरु अंगद साहिब जी 10 रागां विच अते तीसरे पातशाह जी ने 17 रागां विच बाणी रची सी।
1: इन्हां 25 रागां विच 6 राग ओ सन जेड़े भगतवाणी विच तां आए हुए सन, पर पहले दूसरे अते तीसरे पातशाह दी बाणी दा हिस्सा नहीं सन। इस तों इलावा देव कंधारी, बिहागड़ा, बैराड़ी, नट नारायण अते कल्याण 5 नवें राग पातशाह ने आप जोड़े। इस तों स्पष्ट हुंदा है कि चौथे पातशाह आप भी राग संकीत विच भारी निपुणता रखते सन। इत्थों ए भी साबित हुंदा है कि भगत बाणी समेत हुण तीक दी सारी बाणी चौथे पातशाह पास मौजूद सी।
0: अमृत वेले गाए जाण वाले आसा राग विच गुरु अमरदास साहिब जी दीआं ए रचनावां आप जी दे डूंघे प्रेम अनुभव, बहबलता अते काव्य प्रतिभा दी तस्वीर हन। ए महान सहजवादी रचनावां विच प्रभु प्रेम दी गल है, मिलाप ले तड़प रही बिरहण दे मनोभाव हन अते बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान। इस बाणी अंदर बिजोग भावा दीआं हुक्कां ते कसकां त्राटां अते पीड़ां दा व्यान है।

0: हम अवगुण परे एक गुण नाही,
1: अमृत छाड़
0: बिखै बिख खाहि। माया मोह परम पै पुले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास

अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जन

जाकर कार सब किस है पाई नानद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई उचा गम अपार जी जंत प्रतपाल दा पाई नित नित करदा सार सतगुर पूरा।

मेल संत सभा मन मान जी पाई, हर कै नाम निवास, मिटै अंधेरा ज्ञान तपाई, कमल होवे प्रगास, गुर बचनी सुख उपजै पाई, सब फल सतगुर पास, मेरा तेरा छोड़ी पाई, होई है सब की तूर, घट घट ब्रह्म पसारिया पाई, पेखै सुनै हजूर, जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिया चूर, करन करावन समरथ पाई, सर्व कला भरपूर, प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह पिन विनाश, तिस भावे ता मेल लय पाई, हृदय नाम निवास, गुरमुख कमल प्रगासी पाई, हृदय हुए प्रगास, प्रगट पया प्रताप प्रभ पाई, मौल्या धरत आकाश।

जड़ा जल जाऊं। बहु गुण मेरे साहिब पाई हों तिसकै बल जाऊं। ओहो निर्गुणी आरे पालदा पाई देन थावें थाओ। रिजक संबाही सास सास पाई गूढ़ा जा का नाओ। जिस गुर साचा पेटी पाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी न जीवी पाई सर्ब कला भरपूर। सास ग्रास न बिसरै पाई पेखों सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई सर्ब रहया भरपूर। जिन्ना प्रीत न लगिया पाई से नैत नैत मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई पाओ जल विखम पाओ जल दुख संसार। कर कृपा नदर निहाल्या पाई की तो ने अंग अपार।

चार पटशांता प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल शांता प्रसाद नमो नरक नासिस देवंग प्रकाशे नंगंग स्वरूपे भंगंग भूते परमाधिंग परमाधि सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूप निर्वाद विभूपे पूते अनंगी नामे तिरभंगी तिरगामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र है।

जाए भगवती शांतता प्रसाद के जहाजूर है क्या हजूर है हमेशा सलाम है समाधल कलाम है के साहब आगे अवसर जरागे के कमल करीम है राज करीम है के रोजी रहता है कि राज कर रहा है क्रीमल कमाल है कि उसल जमाल है क्रीमल राज है क्रीमल नवाज है हरिफल सिकन है रासल बखान है कलंक प्रणास है समातल निवास है कंजल गनीम है हरजाय करीम है समातल जमा है कि साहेब गिरा है कि नरक प्रणास है बैस्तुल निवास है कि सरबल गवन है मीसल रवन है तमामल तमीज है समातल अजीज है

जगत ईश्वर है, ब्रह्म ईश्वर है, जल काल कारण है, सर्ववारण है, रद के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्ववास्तव है, सर्वनाश है, करुणा कर है, विश्वं पर है, सर्वेश्वर है, जगत ईश्वर है, ब्रह्मांड से खल खंड से परते पर है, करुणा कर है, जब जब धप धप है, कृत कृत है, मृत मृत है, अमृतामृत है, करुणाकृत है, कृताकृत है, तरणिंद्रत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, मृतामृत है, अजबाकृत है, मृतामृत है, नरनायक है, कलकायक है, विश्वंपर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वायक है, पाव पंजन है, अर्कंजन है, नृपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्मा है, सर्वात्मा है, आत्म वास है, जस के जास है, भुजंग प्रयाद छंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज सिंह धाम सिंह शांत रूपे, नमो परम दत्तंग दत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगेश्वर परम जोगते, नमो नित नारायणे गुरुर कर्मे, नमो प्रेत प्रेत देवस धर्मे, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे।

नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योति ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूज्य नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादिंग भूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे अनंगीय नामे इतर पंगी तर काले अनंगीय कामे एक अश्री शांत अजय अलय भय भूजुनाथ काश गंज पंज लख पाख काल दयाल गेख अनाम काम घाटा नाथे परमाथे जो नियम मुनि न रागे न रंगे न रूपे न लेखे कर्मग परमग गंज लेखे कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस नमो आस आस नमो वाग भंके भंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री शांत अजय अलय अपय अभय भूअजुअनाश काश गांजे पांज अलख पख काल दयाल अलख बेख नाम काम घाटा अनाथे ब्रह्माथे जोनि मोनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मग परमग गंजे अलेखे भुजंग प्रयाद छंद नमास्तल प्रणामे समास्तल प्रणाशे अगंजल नामे समास्तल निवासे निरकामंग भूते समास्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणाशे सधर्मंग भूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणाशी ग्रीमल परिंदा समास्तल निवासी जय भूते जय ग्रीमे हरियंग हरियंग ग्रीम हरिमे चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्र भुगते स्वयंभव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग भूते चतुर्चक्रवर्ती।

जन प्रेम कियो धन ब्रभायो काहू ले पान भूई दर सर काहू ले लिंग कर रटकायो काहू ले फिर वचित समय काहू पुछा को सी सुनवायो।

निबंध दर्शन के हंता तुमोहपुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जी अवतरा काल पाए गर्भ विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

आप हो संत प्यारे वे कथ की करें कहानी करें कहानी कथ गिरी के द्वारे पाई है तन मन धन सब सौंप गुरु को गुमन पाई है हुकुम मन्य गुरु के रा काबू सची बाणी कहे ना सुनो संत कथे हो कथ कहानी ये मन चंचला चतराई किने न पाया चतराई न पाया किने दुष्ण मन मेरिया यह माया मोहनी जन इस परम पलाया माया का मुनि जन की जन ठगौली पाइया कुर्बान किया दिस बिठो जन्मो मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले कुटुंब तू जे देखदा चल नाही तेरे नाले साथ तेरा चले नाही तिस नाल क्यों चित लाई है ऐसा कम मूले न कीजे जदंत पछोताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले कहे नानक मन प्यारी तू सदा सच संभाले अग मैं गोचरा तेरा अंत न पाया अंत न पाया किने तेरा अपना तू जान ही जी जंत सब खेल तेरा क्या को

नानक सफल जनम जय कट उठा सच तनी संत। तिन खनिया वंजा जिन मेरा हर प्रवड़ी ठाराम, जन चाख अगाने हर हर अमृत मीठा राम।

जस बेगुपिया भाषण गोपाल गहने तोड़ बणी पैसल जंसूरी अवतार संगली धरती माल धन वर्धन सज्जन नानक पुछाए गया नहीं हुई खाए गया जम खान हल्ला पहला।

ते संतों के योगी सचो संत ध्याया होली मंदा कारण रचियो कातो के धर्म कमाया होली दुनिया तोड़े बदरा भाई थोड़ा गाया तू दुखी भी अगला दिन दुआ गया बढ़िया ही बात आया।

0: ज्ञानी न चढ़वा देवा वे रूप कहे श्री कहे
1: मूर्ख पंडित हिम्मत विद्या संज्ञा कर दिया।

0: जास काम न हुई तू करता करना माना ही जा कहीं न हुई बलिहारी कुदरत बसिया तेरा अंत न जाई लख्या रहा
1: जात जोत भरपूर सच्चा साहिब।

थोड़ी सर्दी मिट्टा हो आ रहा कुछ मिल गया कसम सुना लिया जिन कारो दे ज्ञान अंजन दिया नेत्री जग ने हलिया कदम जोड़ के डुबे से उजाया सदू है बहुत सारे जागरण।

ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वकियान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग मन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होम में बहु रतना शरीर कटाए होम मैं कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै महा उदास तपी सरथी वै अगन माहे होमत प्राण कनक अस्व हैवर भूम दान न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै तौपी होम मैं मैल न जावै हर के नाम समसर कछ नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि। मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमाना मन ते हुटै सोच करै दिन अर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही कौ बहु साधना करै मन ते कबहू न बिखिया टरै जल धोवै बहु देह अनीत शुद्ध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उधरे पतत बहुमूच बहुत स्याण पजम का पौ व्यापै अनक जतन कर त्रिसन न त्रापै पेख अनेक अग्न नहीं बुझै कोट उपाव दरगह नहीं सिजहै चूटस नाही ऊब पयाल मोहे व्यापह माया जाल अवर करतूत सगली जमडान है गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान है हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संगे हों मैं छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मह पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस कौ जो जानै नीचा सोउ गनियै सब ते ऊचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देखै सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन समदृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्तन कौ तन तेरो

मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत जन नहार प्रभु परबीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेसै आप न करै आवत जावत जनमै मरै जिसके अंतर बसै निरंकार इसकी सीख तरै संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण प्राता करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आपह मानै आपह आप करत निबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव सियानप सगल ते रहत सब कछ जानै आत्म की रहत जिस पावै तिस लय लड़ लाए शांत नंतर

असु ब्रह्मज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्मज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्मज्ञानी ऊचते ऊचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी कीना ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्मज्ञानी का नाही तंदा ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्मज्ञानी का होय सुफला ब्रह्मज्ञानी सुफल फला ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्मज्ञानी जप

ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाईऐ, ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी कौ खोज है महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मनमा है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अदाक्षर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सर जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता,

कई कोट नरक सुरग निवासे, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खा है, कई कोट कल है थक पा है।

सोई फुन थियो, कबू ऊच नीच में बसै, कबू सोग हरख रंग हसै, कबू निंद चिंद व्यवहार, कबू ऊब आकाश पयाल,

नमस्कार प्रभु की उस्तुत करो दिन रात तिसह त्यावहु सास गिलास सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा कोथिया अपना खेल आप करना हार दूसर कौन कह बीचार जिसनों कृपा करै तिस अपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से श्लोक तजहो सियानप सुरजनहो सिमरो हर हर राए एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पौ जाए अस्पदी मानु की टेक बिरथी सब जान देवन को एक है भगवान जिसका दिया रह

हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए उस्त मन मह कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत।

जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल घट सो है धनवंता होए क्या को गर्भ जां सब किस तिसका दिया दरबै हथ सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहता आवै जे को होए बह दातार तिस देन हार जानै गावार जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग नानक सो जन सदा अरोग ज्यों मंदिर कौ थामै थम्मन त्यों गुर का शब्द मनै अस्थम्मन ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै ज्यों अंधकार दीप प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास ज्यों महा उद्यान महमार्ग पावै त्यों साधु संग मिल जो

संतन कर पाया तज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हिरदे मह तोल लाल खेप संत है संग चाल अवर त्याग बिखिया जंजाल तन तन कह सब कोहे मुख उजल हर दरग है सोए एहो वापार विरला वापार है नानक ताकै सद बलिहार है चरण साध के तोय तोय पियो अर्प साध को अपना जियो साध की धूर करो इस्नान साध ऊपर जाइए कुरबान साध सेवा वड भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनक बिघन ते साधु राखै हर गुण गाए अमृत लस चाखै ओट गई संत दर आया।

तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी। जब एक है हर आगमा पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए, तब शिव सख्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत तरै, तब कवन निडर कवन कत डरै।

किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही अचरजा नानक अपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता।

शास्त्रपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माह चार कुंट दह दिशे समाह इससे पिन नहीं कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमृत महदेख ससियर सूर नक्षत्र महेक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कबहू डोले।

आस अनित त्यागो त्रंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करो, साध संग यागन सागर तरहो, हर तन के पर लेहो पंडार, नानक गुरपुरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमान।

बेशुमार अथाह अगणत अतुल जो बुलावो त्यों नानक दास बुले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर बाला प्रीतम छठम गुरदेव जी के पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे हजूर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के ज्ञान प्रकाश अंदर सुशोभित गुरु की साजी नवाजी सात संगत पावन शब्द जिदा मूल पाठ शुद्ध पाठ सत्कारयोग गुरु क्या दी रसना तो आप जी ने श्रवण किया है। हजूर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे अंक नंबर 544 ते बिहागड़ी राग विच श्री गुरु अर्जुन देव पंचम गुरदेव जी का उच्चारण किया होया ते मुबारक शब्द हजूर जी ने कर दो मीनिंग दो ताल विच गाया है ते शब्द की आरंभता करदे होया गरीब नवाज फरमाउंदे ने परमात्मा एक है नानक मत दा गुरु नानक साहब जी का ईश्वर नू एक कहना ये बड़ी अलौकिक बात थी क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी का जेड़ा मत है वो करते नू अनादि मनदा है और एक कहना ही सब तो वड्डी अवतारवाद ते चोट थी। वो एक है और ओदे वर्गा कोई दूसरा है नहीं। ऐसे गरीब नवाज दे बचन आप जी पढ़ते हो जैसा तू पैसा तू तेरे वर्गा केवल तू तेरे तुल किनू खड़ा करा तेरे बराबर किनू खड़ा करा क्या उपमा दी जाए क्या तेरी मैं सिफत सलाह करा। रियलिटी ये है कि तेरी सिफत सलाह तेरी उपमा पूरी हो ही नहीं सकती। हजूर दे बचन ने कहन दे कह कह कह जावे कहन दे जप दे तेरा गुण गणान कर दे पता नहीं कितने तुर गए पर किसी ने यह दावा नहीं किया कि मैं पूरा कह लिया। जे पूरा कहा जाता जे पूरा बयानिया जा सकता कि सच्चाई है कया होया वड्डा हो जाना सी जिन्हों कया जाता वह छोटा हो जाना सी। इसलिए साहिब आखते ने तेनू कह कह के तेनू गा के तेनू सिमर सिमर के पता नहीं कितने तुर गए पर तेनू पूरा नहीं किया जा सकता। श्री गुरु नानक बाबा जी आप तस्लीम कर दें कि अंत न सिफती कह न अंत तेरिया सिफतां का अंत नहीं तेनू कहन वालियां का अंत नहीं। अरे तेरिया सिफतां का अंत ते दूर की बात है जो तू संसार दे अंदर बनाया है ऐ करता तेरी किरत का भी कोई अंत नहीं है। अंत न करना है देन न अंत परमात्मा बेअंत है। हजूर फरमाते ने वो जो एक है बेअंत है वो नाल मिलाप गुरु की करुणा द्वारा होएगा। जिन्नी देर गुरु करुणा ना करे परमात्मा दे दैवी गुण एक गल याद रखना परमात्मा नाल मिलन का अर्थ है जो ईश्वरी गुण हैं उन गुणा का हिरदे विच आ जाए।

देव जी महाराज जी की विरोधता करनी शुरू कर दी। पहले भी कई चालां चलियां उन्होंने गुरता की गद्दी नूं प्राप्त करने वास्ते, पर कोई चाल कामयाब ना हुई। पर इधर शांति दे पुंज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हां नूं वर प्राप्त है साहिबां दा, एक पासे ते भरा विरोध कर रहा है, दूसरे पासे साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने भतीजे मेहरवान नूं अपने पास रखिया है, पुत्रां वांगू दी पालना पोषणा करदे हन। पर पृथ्वी चंद अते माता करमों दे मन विच ए आसरा बद गया, चलो जे सानू गुरता दी गद्दी नहीं प्राप्त हुई तो इन्हां दे ग्रह किहड़ा कोई औलाद है, इन्हां तो बाद साडे साहिबजादे नूं ही दात प्राप्त हो जाएगी। दराणियां जठाणियां विच कई वार सत्कार हुंदा है, समा बढ़िया ते माता करमो ने जदों मेला मारिया ते साहिबां दे चरणां विच माता गंगा जी ने अरदास अरजोई कीती, इतिहास बहुत वड्डा है, समय दा ध्यान रखना है। सो गुरु साहिब दी अपार बख्शिश रहमत दा सदका साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने अपने सेवक नूं वडियाई बख्शदियां होया बाबा बुढ़ा जी दे पासों किस तरह माता गंगा जी ने जाके सेवा कीती ते वर प्राप्त होया, ते साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी दा प्रकाश होया, ते साहिबां दे प्रकाश होने तो बाद फिर भाई पृथ्वी चंद अते माता करमो सारा ही परिवार, क्योंकि गुरु घर का विरोधी सी, गुरता दी दात दी ए लालसा उन्हां दे मन विच, ते साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी नूं भी कई तरीकियां दे नाल मारन दा प्रोग्राम उलीकिया गया, पर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने डोरी उस परमेश्वर दे हाथ ते रखी, ते पावन पवित्र शब्द जो आप जी ने श्रवण कीता है सुरठ राग दे अंदर, मेरा सतगुरु रखवाला होवा धार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोवा, मेरा गुरु मेरा परमेश्वर आप मेरा साथी मददगार बनिया। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने एक बार तार चढ़िया, सेवका ने कहा किसी हकीम दे पास कोई उपराला किया जाए, पर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने कहा भाई मेरा हकीम केवल ते केवल वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर है जिसने इन्हां नूं संसार ते भेजिया है, वह इन्हां दी रखिया करनगे। ते समा बढ़िया उस अकाल पुरख परमेश्वर ने बख्शिश की, जदों साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज निरोए होए उस अकाल पुरख परमेश्वर का धन्यवाद करदे आं, ये पावन पवित्र शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने उच्चारण किया, ताप गया प्रभु आप मिटाया जन की लाज रखाई, अपने सेवक दी उस वाहिगुरु परमेश्वर ने आप लाज रखी। ते प्राप्त किसो होया वडियाई बख्शी है साध संगत नूं, साध संगत ते सफल पाए सतगुरु के बल जाई, क्योंकि बख्शिश भी साध संगत दी होई ते साध संगत दी अरदास द्वारा ही इन्हां दा प्रकाश होया, ते साध संगत दी बख्शिश द्वारा ही ये निरोए होए। हलत पलत प्रभु दोवे सवारे हमरा गुण अवगुण ना विचारिया, लोक अते परलोक सवारन वाला वाहिगुरु परमेश्वर साडे अवगुणा की गिनती नहीं गिणदा, हमरी गणत ना गणिया काई अपना बिरद पछाण, हाथ दे राखे करे अपने सदा सदा रंगमान, अटल बचन नानक गुर तेरा
ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸਮਝਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਸੀਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼।

पावन पवित्र गोदे अंदर हफ्तावारी दीवान विच हाजरिया भर के जीवन दियां घड़ियां नूं सफला बना

0: हम गुरजी मेरे हो।
1: एक बार सारी संगत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं शीश झुका के जद के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु समर्थ है, गुरु निर्वैर है। प्यारे गुरसिखो, भावें मैदानी जंग अंदर दुश्मन हजारों की तादाद में फौजा लैके मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी से अण पेंदे, पर सतगुरु सं बिरती के मालिक हर एक दे नाल प्यार करन वाले, जे कोई अचनचेत जुलम आण के करे, निर्दोष के नाल धक्का करे, सतावे, फिर उसका मुकाबला तो मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने करना ही होया ना। पर याद रखो, गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने अपने जीवन अंदर चार जंग किए मुगल फौजा के नाल। मेरे गुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का विरोध, उन्होंने जंग, उन्होंने लड़ाई किसी बंदे के खिलाफ नहीं, उन्हों का किसी मजहब जात फिरके दे नाल कोई वितकरा नहीं, उन्होंने तो जुल्म करन वालों के नाल वैर है, बल्कि किसी मनुख के नाल नहीं। प्यारे गुरसिखो, गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज के जीवन के विचों सानू यह जात सीखनी मिलती है। मैदानी जंग में जूझते हुए दोवें पासियां दे बहादुर योधे धरती से जा डिगदे, दुश्मन दल अपना आप जिहड़ा कुछ बचदा वह बचा के दौड़ जाता, जिहड़े मारे जाते। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जिथे अपने नाल जूझण वाले बहादुर योधिया की सेवा संभाल करते ने ना, उत्थे दुश्मन दलों के डिगे हुए घायल हुए मनुख उन्होंने भी सेवा संभाल मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह करते हैं। प्यारे गुरसिखो, किवें कह लवांगे किसी मनुख के नाल उन्हों का वैर सी, बल्कि वैर सी उन्हों का जालम लोगों के नाल जिहड़े जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, निर्दोषों के उत्ते धक्का करते हैं, वादा करते हैं। प्यारे गुरसिखो, फिर जिहड़ा किसी के उत्ते जुल्म करे, धक्का करे, वह मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कदे भी बर्दाश्त नहीं किया, धक्के को मेरे सतगुरु जी ने कदे बर्दाश्त नहीं किया। ध्यान दो, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत का कारण आप प्यार पढ़ते हैं ना। हिंदू धर्म के वह लोग पातशाह औरंगजेब के सताए हुए सतगुरों के चरणों में आए। ध्यान मार के वेखो, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उस धर्म के धारनी नहीं, वह जनेऊ पहनने के हक में नहीं, पर गल है कि किसी के उत्ते धक्का क्यों हो, इस जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज इन्हों लोगों के नाल चलो गए, बादशाह कुछ अकल नूं हथ मार, और जिन्हां लोगों ते तेरी ये उठी हुई जुल्म की तलवार है, इन्हां दे नाल धक्का कर दें, निर्दोषों के उत्ते तलवार दे वार कर दें, इस नूं बंद कर दे। फल स्वरूप गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत हुई। अज आनंदपुर साहब घेरा पा के सतगुरु पातशाह महाराज के हमलावर हो के आते हैं, पर सतगुरु महाराज जी के सिंह मैदानी जंग में दुश्मन के आहू लाने ने। इस दरम्यान गवली जंग हो रही है, दोवे पासों के सूरमे वध वध के एक दूजे पर वार करते हैं, पर गुरु चरणों में रहने वाला एक सिख चिट्टे पहने हुए वस्त्र, गुरबाणी के रसना का रसना के उपर गुरबाणी का जाप है, सतना वाहगुरु का सिमरन है, श्वास श्वास के नाल हिरदे के विचों उठण उठता होया, पर मोढ़े ते पाई हुई मछक, और जिथे अपने जल वरता है उथे दुश्मन दलों के डिगे हुए कैल होए जेड़े तरले करते ने वास्ते पाते ने। प्यारे गुरसिखो, ये सम दृष्टि अनुसार अपने ते बगाने नू किसे नू नहीं, बल्कि सारे नू एक सार जल वरता। ध्यान दियो, जे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के चरणों में सेवक आया, इन्हें आके मेरे दातार जी के चरण परसे सेवा भावना जापी। मेरे साहब ने आख्या, लाओ भाई एक डोल जलदा भर के लियो। ये सेवक उस वक्त डोल लैके गया, जल भर के लाया। गुरु तेग

0: बोले ना कोई वार चिलावे
1: हो भाई कन्हैया दाता दुश्मन दल नु पानी पियावे
0: ओ भाई कन्हैया

金个零零九的卖钱的，就给压三年，一文大都不值得给的。कि जेड़ा जीवन कर्म से निर्भर है, कर्म बदल देने ताम बदल देने मत बुद्ध मन बदल देने मत बुद्ध मन ताम बदल दिए जे गुरु की सिख सुनी हो गई मत विच रतन जवाहर बाणी जे एक गुरु की सिख सुनी ना हो वे सिर्फ मननी भी हो गई सुने मने ते केवल मननी ना हो वे भावना नाल मननी हो वे प्यार नाल मननी हो वे भाव नाल मननी हो वे किसी बुद्धों वास्ते ना मननी हो वे कई बार मनुख कई काम करता है पर बुद्धों वास्ते करता है गुणबाणी की जान जेड़े काम बुद्धों वास्ते करे मन दियां भावना नाल ना जुड़े होन उनदे विचों मनुख नूं रस ना आवे बैठा बार बार घड़ी वाल क्या देखता है कदों भोग पवे बार बार घड़ी वाल क्या देखता है कदों भोग पवे रस नहीं आ गया जदों रस आउंदा ना गुरु ने बाणी विच क्यों कह दिता कहन लगे मछली को पूछे तू जिंदगी दे एने साल पानी विच रही है एने साल पानी विच रही रजी ने मनुख दो चार साल दस साल एक किस्म का खाना खा ले अक जाता बदलवा चाहता किसी शहर में दो चार साल लगातार कटके वोकेशन चाहता तू चेंज आवे मछली तू पानी में ही पैदा हुई है पानी में तेरे बड़े बीत गए तेनू पानी तो रज नहीं आया मानिंदर बड़ा खूबसूरत जवाब कहन लगे माधव जल की प्यास ना जाए खत्म नहीं क्यों जल में अगन उठी अधिकाए अगे नो ज्यादा प्यास लग गई ज्यों ज्यों जल में रही प्यास बढ़ती गई घटी नहीं ते जदों इस किस्म की प्यास हो वे, फिर एक ख्याल करो मनुख अकदा नहीं उन बद्धों वास्ते नहीं कहते उन्हों पाहो कहते खैर मैं अगे तुरा सुने मने मन कीता भाव क्यों बहुत सारे प्रभु के गुणा का संग्रह दिखा दिखा मत बुद्ध सुरत मन करना शुरू किया मैं आखिरी कप्तान तक पुजना चाहना क्योंकि अगली पौड़ी पर बदल आखिरी पड़ा से जो सर्मखंड की ड्यूटी लगी जरूरत कर्मखंड को बदल दी है क्योंकि जीवन कर्मखंड है मैं एक बार की चीज यही है कि ये शरीर कर्मखंड है कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे ते फल पाए
शरीर कर्म धरती है। इस कर्म धरती विच कई बार इन्नी पवित्रता इन्ने खूबसूरत फुल खिड़दे ने इन्नी खूबसूरत वातावरण ते धरती बन जाती है कि प्रभु आप उन्दे विच आके बैठ जाता है।

शरीर भी एक पवित्र स्थान है। तो गाइस शरीर भी पवित्र स्थान है, तन तन सुहावा हो शरीर स्थान है, जिथे मेरा गुर धरे विखा वस्तु ठिकाण ले। जिन जिस शरीर नु काया नु जन्म नु जीवन नु जेड़ा कदम दा पुतला है उन्हों प्रवान चढ़ जाता है, तो अपनी सब तो पवित्र शक्तिशाली वस्तु जी उनके रख दें। पर उन्हों पहला सजाना है, तो उस सजावट का ना ही काड़े पे कर्म ने सचखंड बनना है। इसलिए किवें बनना है, सर्वखंड की ड्यूटी लगी, कर्म ने ता सुधरना, पहला मत बुद्ध सुत बुद्ध सुधरेगी, इनू कढ़न की लोड़ है। उथे तिथे खड़ी है सुत मत मन बुद्ध, तिथे खड़ी है सुरां सिद्धां की शुद्ध, तो जदों वह घड़ी गई अगले कर्म खंड की बाणी जोर आ गए। मैं आखिरी लफ्जा से पूजा, वह कर्म खंड जदों घड़िया गया खूबसूरत हो गया, सच खंड बन गया। तिथे भक्तवस्तें के लोग करें आनंद सच्चा मन से, उसे खूबसूरत सच्चा मन सच का टिकाओ बन गया। हूं वो सच का टिकाओ की ही सच खंड बस। हूं मसला अगली पौड़ी में आया जी, वो कर्म जरा कर्म खंड सच खंड बने हैं, उनकी कारत की है सानू पता किसे जाने गलती की सी, गुरु ने कुछ छुपा के नहीं रखिया। बड़ा एडवांस संसार है मेरे सतगुरु, हर चीज प्रत्यक्ष करके सामने रखता है, ख्वाबी गल नहीं करता। सवाल पैदा होया जी, आखिर कर्म खंड नू इन्ना खूबसूरत बना देना कि वह सच खंड बन जाए, उन्हों किवें करिया गया? जेड़ा मेरे प्रभु नू अपना घर समझ के प्रवान होया, लो उनकी कहाड़त की जिहड़ी टकसाल है ना, टकसाल उसे नू कहिंदे ने जिथे कोई चीज घड़ी जाए, करंसी घड़ी जाए, कोई होर कीमती चीज घड़ी जाए, उन्हों टकसाल कहिंदे। हुण इत्थे इक लफ्ज़ स्पष्ट करके अगे तुरना चाहना, इतने लफज ने घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल। बड़ा हैरान हो गया है, शब्द में घड़ना भला, शब्द भी हम घड़िया ऐसा रुकना जिसनों लीए इन शब्द घड़िया जाता है, तो कि गल है शब्द में घड़ना है कि शब्द नाल घड़िया जाना है। जीवन में शब्द कटता है ना, तो कोई ऐसा मोड़ है कि शब्द घटिया जाता है। ऐसे से रुकना चाहना, जरा दोबारा तो पढ़ लीजिए।

कड़िए शब्द सच्ची टकसा। लो ऐसे सूक्ष्म भेद है। एक चीज वो होंगी है जिसनों असी रूप च तरना होवे, साडे ख्वाब विच साडी कल्पना विच जो आवे असी उन्हें ओवे कटे ओ कारपोर। एक घाड़त जड़ी है, एग्जाम्पल वजो पत्थर, एक पत्थर उनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई अच्छाई भी नहीं, गुरमत ने भी नहीं मनी। पत्थर ना करता है डुब जाता, ना पिजदा है सुक्का दा सुक्का रहिंदा है। जैसे पाहन जल में रखियो पानी विच रख लो पिजदा नहीं। पत्थर पाथर को बहु नीर पवाया, पत्थर रख के उनके दिन रात पानी पाई जाओ, पानी पाई जाओ, उन्हें योग थोड़ा पहने। पत्थर को बहु नीर पवाया, न भीगे अदक छुपाया, पिजदा नहीं, कोई असर नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं कबूलता। जे पानी की सतह से रख दो डुब जाता, जरा आप नहीं डुबदा, जोड़ा उनके सहारे या उनकी संगत में बैठा हुए उन्होंने भी डुब दिता, इसलिए गुरु ने बाणी भी चाह दिता। कह लगे हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, किवें पत्थर पाप बहु लद्या, गुनाहगार हो लून हरामी पाहन नाव। पत्थर बेड़ी में रखे हुए, बेड़ी नहीं डुबती, पत्थर करके डुब रही, बेड़ी डुबन वास्ते नहीं पानी, बेड़ी के डुबन का कोई चांस नहीं, बेड़ी तरती है दूजे भी तार दी। पर बदकिस्मती नलते के कहने में पत्थर वो बेड़ी जी तरन नहीं सी, तारन नहीं सी, हूं डुबन के किनारे पे है। गुरु ने भी आखना पिया पाहन नाव न पार ग्रामी। एनी घटिया किस्म के, इस किस्म के पत्थर जड़े ने, जे भला उनके कोई खूबी तैयार करनी हो, किसे बुत घड़े ने, किसे बुत तराश ने पत्थर का टुकड़ा ले लिया है, पत्थर का टुकड़ा ले लिया, वो तो पत्थर है, उनके उन्हें बड़ी खूबसूरत मूर्त तराश दी, मूर्त तराश। हम किसी ने डेकोरेशन पीस समझ के अपने ड्राइंग रूम में रख लिया, हूं वो जो अंदर वड़ा पत्थर नहीं देख रहा, पत्थर नहीं देख रहा, उनके विचों मूर्त देख रहे हैं, पत्थर के विचों तराशी गई है, वैल्यू मूर्त की है पत्थर की नहीं, बिल्कुल पत्थर की कोई वैल्यू, पर तराशी गई है पत्थर विचों, मूर्त वैल्यू, मूर्त की वैल्यू है। जोड़ा देखने वाला है वो पत्थर के गुना नहीं देख रहा, वो देख रहा है इनके विचों मूर्त दिस रही है। लो इत रुकना चाहना, यह घड़त मनुख के जीवन जड़े ने पत्थर वांगू हो चुके सन, जीवन पत्थर जिंदे ते कोई इफेक्ट नहीं, कोई असर नहीं, बन पड़ रहा कोई असर नहीं, क्योंकि अजे घड़त नहीं हो शुरू हुई, जरूर तुम पिछले घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध शुरू हो गए घड़, अरे घड़ शुरू नहीं हुई, जीवन पत्थर आया हुआ है, पत्थर के जीवन में कोई असर नहीं होता। सौ बार पानी में रख दिन रात अखंड पाठ हो रहे हैं, कोई असर नहीं,
पांच पांच सत सत बाणियां दे दो दो चार चार सुखमणी साहब दे रोज पाठ करी जांदा पर जीवन ते कोई असर नहीं। कर्म ओहो ही नहीं जिहड़े कल सन अज ने, क्योंकि जीवन जीवन दे कर्म पत्थरा चुके। बल्कि मैं एक बार कीती सी गल करियो, साडियां संभावनावां विच मार्बल ते कीमती पत्थर ला ला वड्डे वड्डे गुरुद्वारे बनाने का शौक जरूर पैदा हो गया, पर अंदर बैठने वाले का जीवन पत्थरा रहा है। देखना यह कि नहीं पत्थर में बैठ के पत्थरा रहे हो गए। तो मैं एक बार की अपने पुस्तक में भी एक इस गल से आर्टिकल लिखे कि गुरु तो आख रहे हैं ठाकर हमारा सद बोलन का सिख है तो बोला ना पुजारी आ पालकी बच्चे ने बोल इतने की हो रही है बोल। जब सिख शब्द का पुजारी होंगे उदो की होंगे बोलन का पुजारी। गुरु आख रहा है ठाकर हमारा सद बोलन का, तो दूजे पास नाल ही आख रहा ना पाथर बोले ना किस दे ओ अबोल है ओ बोल है। पर पैसा अबोल ते लग रहा है बोलते नहीं, सरमाया अज अबोल ते लग रहा है बोलते नहीं। जिस सरमाए नाल असी लोगों तक गुरु के बोल पहुंचा सकते सां, दुनिया के हर हिस्से तक पहुंचा सकते सां, वो सारा सरमाया बौतात विच असी अबोल ते पत्थर चला नतीजा निकल रहा है कि जीवन पत्थरा रहा है। हम मेरे गुरु ने की रहमत रहमत उन्हें आखिया जो होर कुछ नहीं तय कर एक कर्म रूप जेडे पत्थर ने इन विचों शब्द की मूर्त कट के बाहर लाया। लो आ है शब्द का कटना, अपनी मर्जी का शब्द कटना नहीं, उस कर्म विचों शब्द की मूर्त दिखे सुखनी निशानी की है। हम हर कर्म विचों गुरु दिसदा है, मानो घड़िया गया है। जो जीवन घड़िया जाता है ना, जो सिख मत मन बुद्ध घड़ी जाती है ना कर्मखंड विच, उदो सिख ऐसे कर्मखंड का वासी हो जाता है जिनका कर्म जेड़ा है उनके विचों गुरु दिसदा है। जिवें पत्थर विचों मूर्त दिसदी है, वैल्यू मूर्त दी है पत्थर दी नहीं। जे मूर्त ना दिसदी किसे ने पत्थर नूं की करना सी, ओ भलिया तेरे कर्म किसे वेखे नहीं जे विचों गुरु ना दिसे। विचों गुरु दिसना चाहिदा। श्री गुरु साहिब ने एक थान बड़ी खूबसूरत लफ्ज़ आखे ने, कहिंदे ने सत

अपनी कहानी खिड़की की तरफ एग्जाम्पल। इसी तरह गुरु ने अनेक थावां ते बाणी अंदर बार बार समझाने लई वख वख किस्म दीआं उन्हां वस्तुआं दा जिक्र कीता, जिवें अमृत दे संबंध च बोलदे इक वार कीती सी, इह पंज जिहड़ियां वस्तुआं ने इन्हां दे गुण लै ने, पाणी बाणी बाटा खंडा पतासे, इह पंज वस्तुआं ने। पर जे वस्तुआं रह गईआं इहदे विच्चों गुण ना लै तां फिर पतासिआं दी की बणी हुंदा जी। इन्हां चीज़ां दीआं जिहड़ियां शक्तियां ने ना अंदरों गुण जिहड़े ने उही एकत्र कीते। एनर्जी किसी पतासे विच केड्डा वड्डा गुण है, जल विच पैंदे ही अपनी होंद छड्ड दिंदे ने, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं दिंदे, 10 मिनट बाद भाड़े हो किथे ने पतासे पानी विच, अपनी होंद खत्म, आप गवाई। पर गुण खत्म नहीं, मिठास रह गई। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਊਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੁੱਟ ਭਰੋਗੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾਸੇ ਸਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਛੱਡ ਗਏ। ਆਹ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ।